0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2000 98.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.
2: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: 2000's station sponsor.
4: Divar, Yugab 5026, Vikram Samvat 2083, Krishna Paksh ki Triyodashi, 12 July 2026 hai. Darpan ke sabhi shrotaon ko Poonam ki namaste. Is saptah ke samachar is prakar hai. PM Modi 6 se 11 July tak Indonesia, Australia aur New Zealand ke daure par the. भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया. विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत इंडोनेशिया की सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगी. इस यात्रा का फोकस व्यापार, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और ASEAN के साथ सहयोग है. इसके उपरांत पीएम मोदी मेलबर्न पहुंचे, जहां उनकी बड़ी ही गर्म जोशी से 30,000 भारतीयों और प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी ने उनका स्वागत किया. इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, निवेश और सामरिक साझेदारी पर बातचीत करना था. यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है. इसके उपरांत प्राइम मिनिस्टर पहुंचे न्यूजीलैंड. लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा की गई थी. उसका उद्देश्य भारत न्यूजीलैंड संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना है. अप्रैल में हुए भारत एनजेड मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की गई. इससे भारत के 1.4 मिलियन लोगों का बाजार न्यूजीलैंड के लिए खुल गया, जिससे नौकरियां और निर्यात बढ़ने की संभावना है. इस यात्रा का फोकस व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के आपसी संबंधों को बनाए रखना है. न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर ने यह घोषणा की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है. एक खुद दुखद घटना में वियतनाम घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा हुआ. हनोई में भारतीय दूतावास ने बताया कि 11 जुलाई को वियतनाम के फू केचक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट पलट गई. इस हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 32 घायल हो गए, जिनमें से 21 को बचाकर अस्पताल ले गया गया है. भारत में 2047 तक खुद को विकसित देशों की लिस्ट में लाने का लक्ष्य रखा गया है. पीएम मोदी ने पहली बार 2022 के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा था. तब से मोदी सरकार देश को विकसित बनाने के लिए कार्यरत है. 21 साल बाद एक विकसित देश की कैटेगरी में आने के लिए भारत को क्या करना होगा? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी सारी दुनिया में सिर्फ 37 देश ही विकसित की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 31 देश सिर्फ यूरोप के हैं। एशिया में केवल 2 देश हैं जिन्हें विकसित माना जाता है, ये है साउथ कोरिया और जापान। भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी है कि प्रति व्यक्ति कमाई में भारत कई देशों से पिछड़ जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कई सालों से भारत को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों में लिस्ट किया हुआ है। भारत की सालाना प्रति 2760 डॉलर यानी लगभग 2.63 लाख रुपए है। आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत एक बड़ी समस्या बन चुकी है, आमेर फोर्ट का सुख निवास दुनिया के लिए इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन प्रमाण है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर फोर्ट में एक ऐसा शाही कमरा है जहां बिना बिजली और आधुनिक मशीनरी के प्राकृतिक रूप से एसी जैसी ठंडी हवा मिलती है। आज से 400 साल पहले राजपूत वास्तुकारों ने पीले, गुलाबी और बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से इस किले को तैयार किया था। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि बाहर चाहे कितनी भी लू चल रही हो, परंतु अंदर बैठे राजा को शिमला जैसी ठंडी हवा मिलेगी। इसका निर्माण कछावा शासन राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। महल की छत पर बने विशाल टैंक है और नीचे स्थित माबाता सरोवर बनाया गया। इसके बाद पश्चिमी हवाओं के रुख को ध्यान में रखते हुए पानी को संगमरमर की बारीक नालियों से झरने के रूप में नीचे गिराया गया। जब गर्म हवा इस पानी से गुजरती थी तो वह तुरंत ठंडी हो जाती थी। पहले पेट्रोल पंप्स पर E10 पेट्रोल मिल रहा था, तब कोई बवाल नहीं मचा, लेकिन जब से E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल शुरू हुआ, तब से आए दिन हंगामे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर बेचा जा रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARA और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से टेस्टिंग के बाद ही E20 को मंजूरी मिली थी। अयोध्या के राम मंदिर में VIP दर्शन पास की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा से जुड़े विवाद के बीच यह जानकारी सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों के VIP पास जारी करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके बाद जनता से में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर राम मंदिर में VIP पास कैसे बनता है और इसके लिए कौन अधिकृत है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अलावा अयोध्या के जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG और कमिश्नर को यह पास जारी करने की सुविधा है। यह अधिकारी 200 लोगों के लिए पास जारी कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट के लिए ऐसी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। फिल्मी बातों में 4000 करोड़ के महंगे बजट से बनी रामायण का यह धार्मिक फिल्म निमित्त बड़ी सिनेमैटिक स्पेक्टिकल में से एक होगी। रणबीर कपूर ने राम का अभिनय किया है और इसकी पहली झलक रिलीज होने के साथ ही मेकर्स ने दर्शकों को भारत के सबसे सदाबहार महाकाव्यों में से एक की विरासत की एक झलक दिखाई। मेकर्स ने 24 जुलाई 2026 को इस ट्रेलर का रिलीज करने की घोषणा की है और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी इसे देख सकेगी। वाणिज्य समाचारों में, दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 1,32,330 रुपए है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 16 पैसे, अमेरिकन डॉलर 95 रुपए 15 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
5: श्रोताओ, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे साथ यतिंद्र गुप्ता, और आज हमारे मेहमान हैं शिष्य झा जी, जैसे कि मैंने अपने संदेश में लिखा था। शिष्य जी, दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद यतिंद्र जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
5: आज का सारा प्रोग्राम श्रोताओ थोड़ा सा अजीब होने वाला है, अभी से मैंने बता दिया, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। और बताइए मुझे कि आप मिथिला के बारे में कितना जानते हैं? हमारे शिष्य जी जो है ना, मुझे खुद नहीं मालूम था, तो इसलिए जब हमारी बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि कुछ नहीं जानते हैं। तो जिसकी स्क्रिप्ट भी अलग है, ये भी मुझे, मैं समझता था कि ये हिंदी का ही एक जैसे भोजपुरी में लिखते हैं बोलते हैं इस तरीके का है, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आज हम मिथिला के बारे में बात करेंगे। और श्रोताओं, एक और बात हम करना चाहते हैं, जितना टैक्स और SMSF के बारे में चेंजेज हुए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम चाहते हैं कि इसका सेगमेंट शुरू करेंगे हम दर्पण रेडियो पे, जिसका नाम होगा SMSF एंड टैक्स। उसकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी, हम उसको आंसर करेंगे, और प्रैक्टिकल जो भी सोल्यूशन भी होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेडिंग के ऊपर, और SMSF में जो एक पाबंदी लगा दी उन्होंने कि लोन नहीं ले सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपना पेन एंड पेपर खोल लीजिए, जो भी प्रश्न है आप मेरे से पूछ सकते हैं या अभी भी मुझे लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 0421-590-791, 0421-590-791। और हमारे जो फोरम है दर्पण रेडियो का व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो आज की कुछ रूपरेखा हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कोई और भी हम सेगमेंट शुरू करना चाहें, तो आप मुझे सुझाव दीजिए कि हम और क्या सेगमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे यंग लोग, नए माइग्रेंट आते हैं, जो शायद हमारे रेडियो प्रोग्राम को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मदद करते हैं उनकी, तो कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले हम सुनते हैं आज का विचार पूनम जी से।
4: श्रोताओं, आज का विचार बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
5: दोबारा से सुनते हैं, थोड़ा सा बीच में हिकअप हो गया था।
4: श्रोताओं, आज का विचार यह है, सच्ची खुशी बाहर कि नश्वर वस्तुओं में नहीं मिलती बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
5: तो श्रोताओं, आप कितने लोग ऐसे हैं जो शांति चाहते हैं या आप दुनियादारी चाहते हैं?
7: जीली मकार्थर की साल के अंत की डेमो क्लियरेंस सेल अब शुरू हो गई है। इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए 3 साल की मुफ्त सर्विसिंग, $2,000 का शानदार ट्रेड इन बोनस, साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त। जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI। ऑफर 30 जून तक ही मान्य है, आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए। नियम एवं शर्तें लागू। MD 5411।
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।

0: तो श्रोताओं, ये भजन मैथिली भाषा में था। हम चाहते हैं कि आप कृपया हमें बताइए कि क्या समझ में आया आपको, या आपने क्या पहली बार इसको सुना है, इस भाषा को सुना है। थोड़ा सा कमेंट डालिए, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़ा ये मैटर है, लेकिन लगता तो यही है।
1: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of the Open Radio.
2: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
3: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।
0: तो शशि जी,
4: जी यतेंद्र जी, बताएं
0: कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि आज हम पूरे दो घंटे में थोड़ा सा कम समय हम कम कर लेते हैं, हमारा टैक्स उसका हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। आज हम मिथिला के ऊपर पूरी बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी हो, कितनी रिच भाषा है, कितना रिच कल्चर है। इसका यूएन में टैग भी है, श्रोताओं की यूएन ने इसकी जो पेंटिंग वगैरह है उसके अलग से एक टैग बनाए, तो दैट्स सो गुड। तो उससे पहले कि हम आगे जाएँ, हम चाहें कि आप खुद बताएँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में, फिर मिथिला के संदर्भ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करिएगा।
4: जी अवश्य अवश्य। बहुत सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दूं मैं। मुझे वास्तविक रूप में गर्व की अनुभूति हो रही है आपके सामने में बैठकर और श्रोताओं से जुड़कर। मैं शिशिरेंदु कुमार झा हूँ, मेरा नाम। पेशे से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेड एंड इनोवेशन हूँ। मैं एक लेखक हूँ जिसने चार पुस्तकें लिखी हैं, तीन अंग्रेजी भाषा में है और एक हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा की पुस्तक पूर्ण रूप से पद्य है। मैं हिंदू चैपलिन भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और विशेष रूप से मिथिला, मैथिली और मैथिल समाज के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर सक्रिय हूँ। जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं अपना योगदान अवश्य देता रहता हूँ या देना चाहता हूँ। तो पिछले कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मेरा यह प्रयास है कि मिथिला, मैथिली और मैथिल समाज का एक सशक्त पहचान और साझा मंच मिले, जो कि अब तक इतना परिलक्षित नहीं था। इसी उद्देश्य से मैंने अपने साथियों के साथ सहयोग से एक मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई।
0: सोसाइटी भी बना ली?
4: जी जी, ये पिछले साल 2025 में मिथिला कल्चरल सोसाइटी का नींव रखा गया। और
0: तो उसके कौन मेंबर बन सकते हैं?
4: इसमें कोई भी मेंबर बन सकते हैं, ये खुला हुआ मंच है। आप लोग आए, मिथिला के की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो कलाकृति है
0: जी,
4: उसमें सभी योगदान दें। और जो कोई भी मिथिला मैथिली और मैथिल के लिए योगदान देना चाहते हैं, उन सब के लिए खुला मंच है। एक $51 का एक छोटा सा फी है, जो आपको जीवन पर्यंत या आपको इस मंच का
0: क्या बात
4: मेंबर बना के रख सकता
0: तो
4: है।
0: अपना नंबर भी दे ही दो आप अभी से, जो लोग आपको मैं चाहता हूँ आज ही लोग मेंबर बने आपकी सोसाइटी।
4: अवश्य अवश्य जी, आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लें, 0426-399-461। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 0426-399-461।
0: चलिए, तो अब हम एक उस पर जाते हैं कि मिथिला आप रहे कहाँ हैं, जैसे कि एक ना जुड़ाव होता है
4: जी,
0: कि कैसे आप ये मिथिला में जाके, अभी तो आपने पढ़ाई करी होगी मालूम, दिल्ली से पढ़ाई करी, क्या करा, कैसे आप फिर मिथिला में वापस आए, या मिथिला से आप शुरू से ही थे कि?
4: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरी पढ़ाई मेरा जन्म मधुबनी जिला में एक परसौनी गांव है।
0: अच्छा,
4: फिर तो परसौनी गांव है,
0: फिर तो आप प्योर
4: जी जी, मैं विशुद्ध रूप से, कोई भी थोड़ी सी मिलावट नहीं है। तो मधुबनी जिला अंतर्गत एक परसौनी नाम का एक गांव है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। और पालन पोषण मधुबनी से लेकर के जो जमशेदपुर जो पहले बिहार का ही पार्ट था, और फिर बाद में मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया, और फिर आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपने परास्नातक की। बीएचयू में रहते हुए मैंने एक छोटे से ग्रुप की स्थापना की थी, जो मैथिल लोग, जो भी स्टूडेंट मिथिला से आते थे, वहाँ पर उनको अपना आइडेंटिटी खोजना चाहते थे, क्योंकि बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी जगह से लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा मैंने ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप आज भी सक्रिय है, इस बात का गर्व है मुझे। और मैंने अपने जगहों पे देखा है कि किस प्रकार मिथिला का जो सभ्यता और संस्कृति रही है कितना महान रहा है। और जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो लोग जानते ही नहीं हैं।
0: बिल्कुल।
4: और जब मैं पहली बार यहाँ,
0: बिल्कुल यही एहसास मुझे भी हुआ
4: जी।
0: इतना रिच कल्चर है
4: जी।
0: एक प्रश्न पूछ लूं बीच
4: जी? जी अवश्य अवश्य।
0: आपने बोला मिथिला से आए, मिथिला क्या ज्योग्राफिकली, थोड़ा सा बताइए।
4: हाँ, तो मिथिला देखिए, मिथिला उस संपूर्ण भूभाग को बोलते हैं जहाँ मैथिली बोली जाती है। और मैथिली की जब हम बात करते हैं तो मैथिली सदियों पुरानी भाषा है। माँ जानकी का भी नाम एक मैथिली है
0: जी।
4: तो हम अपने आप को माँ जानकी का संतान मानते हैं।
0: हाँ, हाँ, वो
4: है। और उस तरह से जो भी भूभाग है, जैसे 8-10
0: ये नेपाल तक जाता है
4: जी, 8-10 जिला भारत में है, और नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है, जो जो बिहार के उत्तरी भाग से जुड़ता है, उस सारे क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। और माता जानकी का सबसे बड़ा मंदिर नेपाल जनकपुर में जी। तो ये सारा भूभाग
0: तो मैथिली इसका है। जो भूभाग अभी जैसे आज की करंट फॉर्म में
4: जी,
0: कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं, क्या एरिया है
4: इसमें?
0: अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि पटना, नॉर्मली मिथिला का आशय संभव बिहार से हो जाता है
4: जी,
0: पूरा बिहार इसमें नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
4: बिल्कुल सही है। तो देखिए, जब हम बिहार बोलते हैं तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, बज्जिका हाँ, बोली जाती हाँ, है अंगिका बोली जाती है, और बहुत सारी भाषाएं हैं। बिहार अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत ही रिच एक प्रदेश है, भाषा की दृष्टि से, कला की दृष्टि से। उसमें मिथिला एक भूभाग है जहाँ जो समावेशित करता है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, सहरसा, मतलब बहुत सारे ये सारे जिला हैं जो मिथिला को मिथिला बनाती है। वहाँ हाँ, के लोग मैथिली बोलते हैं
0: हाँ,
4: कुछ लोग अररिया, कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ये सारे हैं। बट जो जहाँ पे शुद्ध मैथिली बोली जाती है, मैं जब भाषा की शुद्धता, आप जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते जाएंगे, थोड़ा सा उसमें मिलावट होते जाता है। उत्तर के जितने जिला हैं उसमें मैथिली अधिक शुद्ध बोली जाती है।
0: अच्छा
4: जी।
0: तो ये अभी जैसे नेपाल में जनकपुर जगह है, वहाँ पे वो नेपाली बोलते हैं या मिथिला बोलते हैं?
4: नहीं, वो मैथिली बोलते हैं। और एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा मैथिली है। तो इस बात का भी हमें गर्व है कि मैथिली एक छोटे से भूभाग तक संकुचित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो ये बहुत ही
0: काफ़ी, अगर वैसे हम नंबर में काउंट करें तो
4: जी,
0: कम से कम 2-4 करोड़ तो बोलते हैं
4: पूरे विश्व में। जब हम केवल भारत की बात करते हैं तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास मैथिल हैं।
0: मैथिल, अच्छा
4: जी। और बाहर में उसी प्रोपोर्शन में मुझे लग रहा है कि कम से कम 60-70 लाख तो होंगे बाहर, या उससे भी अधिक हो सकते हैं। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतने तो होंगे। तो
0: हमारी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा होंगे।
4: जी जी,
0: हमारी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पे हमें गर्व होना चाहिए, हमें ऐसा एक्चुअली मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन तो जो मैथिली भाषा का जितना ये, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जो स्क्रिप्ट है
4: जी,
0: वो हिंदी जैसी नहीं है।
4: नहीं
0: तो जो जैसे हम लिखते हैं तो बोलचाल में तो हिंदी जैसी लग रही है
4: जी,
0: लेकिन इसका जो तो स्क्रिप्ट के बारे में बताइए।
4: देखिए, वैसे जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि मैथिली का जो की जो लिपि है जिसको तिरहुत लिपि बोलते हैं, ये कहीं पर 1000वीं शताब्दी में शुरू हुई। तो लगभग 1000 पुरानी ये भाषा है, जिससे मैं
0: 1000 साल पुरानी, श्रोताओं जरा नोट कर लीजिए, 1000 साल बहुत बड़ा समय होता है।
4: जिससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये भाषा बहुत ही पुरानी है, माता जानकी के समय
0: की। तो मैं कह रहा हूँ exactly.
4: और कहीं पर भी ये मैं इस कालखंड को कम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी भाषा जो है वो एक पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा है, और सबसे बड़ी बात है कि हाल तक ये भाषा और लिपि जीवित थी। अंग्रेज जो विचारक हैं, मिस्टर ग्रियर्सन, उन्होंने इसको एक पूर्ण भाषा के रूप में इसको एक स्थान दिया था।
0: अच्छा,
4: जो 1920 के आसपास यहाँ पर धीरे धीरे
0: पूर्ण भाषा का मतलब
4: पूर्ण भाषा, क्योंकि इसमें इसकी अपनी लिपि है, इसका अपना व्याकरण है, इसके अपने बहुत
0: अच्छा अच्छा
4: अपने लिटरेचर हैं, अपने जो आपके एक भाषा तभी भाषा समृद्ध हो सकती है जब उसकी अपनी लिटरेचर हो, और मैथिली की अपनी लिटरेचर हुआ करती है, जो अब धीरे धीरे दिखती नहीं है, पर पुराने समय में जो महान हमारे पहले नहीं, हमारे महान कवि जिसको बोलेंगे, वो विद्यापति ने शुरू की, और वहाँ से ये भाषा ने भाषा समाज का एक अभिन्न अंग बन गई। और इसका जो संस्कृति है वो धीरे धीरे करके पूरी बिहार में फैला, पूरे भारत में फैला, इवन जो कुछ बॉलीवुड फिल्म भी जो शुरू के बने हुए हैं उसमें भी मैथिली और मिथिला के विषय में बताया गया है। तो पूरे भारत में मिथिला के संस्कृति के विषय में लोग जानते थे, जो कालखंड में धीरे धीरे करके कम हो गई, क्योंकि लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दी, भाषा को हिंदी ने रिप्लेस कर दिया, तिरहुत लिपि को देवनागरी ने रिप्लेस कर दिया।
0: तो क्या शब्द बोला था आपने?
4: तिरहुत लिपि।
0: तिरहुत
4: लिपि,
0: तिरहुत लिपि जी। तो वो लिपि, तो ये जो लिपि है, मैं जो खुद कल मैं जब प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहा था, तो ये बंगाल उड़ीसा के उससे
4: बंगाल असमिया, बंगाल असामीज और
0: उड़ीसा, इन तीनों से मिलके बनाई है।
4: नहीं, ये तीनों भाषा इसी लिपि से निकली हुई
0: है। ओह माय गॉड, क्या गलती कर दी मैंने। ओके,
4: और वो संस्कृति भी देखने को मिलती है, वो संस्कृति भी आप
0: इस संस्कृत में, तो सारे जो आपका व्याकरण होगा,
4: संस्कृत नहीं, संस्कृति कल्चर के बारे में।
0: अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी जी,
4: मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे जो कुछ रिचुअल्स हमारे यहाँ में मिथिला में होता है, कुछ उसी से मिलता जुलता रिचुअल बंगाली में भी देखने को मिलता है, उसी से मिलता जुलता रिचुअल कुछ असामी में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सारे एक ही संस्कृति के हिस्सा रहे हैं। अब समय के हिसाब से सभी भाषाएं अलग हो गई और सब अपने आप में एक महान भाषा है। तो
0: नहीं, एक भाषा से जो मेरा एक क्यों मैंने इस प्रोग्राम को बहुत वो दिया है कि भाषा संस्कृति से बहुत कुछ जुड़ा होता है
4: जी।
0: अब जैसे कि आपने नॉर्मल सुना होगा कि हम इंग्लिश में यू करके बात करते हैं,
4: सही बात,
0: कोई भी बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो आप करके बात करते हैं या तुम करके बात करते हैं, वो छोटे बड़े का होता है। तो इससे फिर क्या आया, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, कैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं, ये फर्क होता है। तो ऐसे ही कुछ मैथिली में भी होना चाहिए।
4: मैथिली में जैसे मैंने बताया, जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, आपने नेपाल से शुरू किया, फिर बिहार में इंटर किया आपने, मधुबनी में इंटर किया, फिर नीचे दरभंगा आया, और इस तरह से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भाषा की शुद्धता और
0: कम हो जाती है।
4: हाँ, कम हो जाती है। तो वहाँ हम भी बड़ों का सम्मान करते हैं, और उनको हम उनके आदर सूचक शब्द हमारे यहाँ अहाँ है, जैसे हम सबको तुम नहीं बोल सकते, वहाँ पर बड़ों का सम्मान सबसे ऊपर रखा गया है। तो जैसे बड़े भाई हुए, बड़े जैसे पिताजी हुए या फिर दादाजी हुए, तो इन सबको हम अहाँ बोल के संबोधित करते हैं। अहाँ केना छे, अहाँ की करे छे,
0: की करे छे। और
4: अपने बच्चों, अपने इवन अपने बच्चों को भी, हम अपने घर पे भी सभी को अहाँ करके ही बातें करते हैं। मेरे मेरी माता जी ने मुझे कभी तुम नहीं कहा।
0: अच्छा
4: जी, तो यहाँ पर सम्मान सबका है। मिथिला में एक एक मिथिला मैथिली एक भाषा है,
0: छोटे हैं बड़े हैं
4: सबको आप अहाँ करके बातें करते हैं। लेकिन वही जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भाषा में थोड़ी सी थोड़ा सा मिलावट होना शुरू होता है। फिर वहाँ पर तू आ जाता है, तुम आ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर लोगों को फिर तू करके संबोधित किया जाता है। लेकिन इसके इसके कोर में यही है कि हम हर हम हमसे बड़ा हो या छोटा हो, सबका हम समान रूप से सम्मान करते हैं।
0: तो आपने, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उसके बाद में छोटा सा ब्रेक करते हैं। आज श्रोताओ, सारे के सारे हमारे गाने भी मैथिली में होने वाले हैं। अच्छा, तो सबका सम्मान करते हैं, तो आपकी माँ आपको अहाँ करके बुलाते थे।
4: जी जी,
0: तो आप छोटे हैं या बड़े हैं इससे?
4: नहीं, मैं नहीं। दूसरे नंबर पे हूँ, मेरे बड़े
0: नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप छोटे हैं, किसी से छोटे भी हैं।
4: हाँ।
0: आप माँ से तो छोटे हैं।
4: जी जी जी, अवश्य।
0: तो वो भी आपको सम्मान से बुला रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं?
4: जी जी, इवन मैं अभी अपने छोटे भाइयों से अहाँ करके ही बातें करता हूँ।
0: तो वो सम्मान इरिस्पेक्टिव कि आपकी उम्र कितनी है।
4: हाँ हाँ, ये सम्मान इसलिए है क्योंकि आप समझते हैं मिथिला हमेशा से चेतना का केंद्र रहा है
0: जी,
4: और वहाँ की चेतना बहुत ही प्रगल्भ रही है, बहुत ही ऊंची रही है। उसमें क्या है कि आपने राजा जनक का नाम सुना होगा
0: जी जी,
4: वहाँ से हमारी चेतना जो है, राजा जनक अपने आप में विदेह कहा जाता है उनको, कि शरीर रहित है वो, मतलब विशुद्ध चेतना है। विशुद्ध चेतना है, तो हमारे यहाँ चेतना इतनी प्रगाढ़ है कि हम सामने वाले को भी दे समझते हैं कि ये वही चेतना है, वही
0: बात है,
4: वही महान सोल है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज को।
0: तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि
4: जी जी अवश्य

0: Curry Masters.
1: Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000.
2: Har Ravivar suniye Darpan Hindi kaikram, 98.5 FM par, subah 9 se 11 baje tak.
3: Shishir ji, ये जो हमने अभी गाना सुनाया था, रफी जी का गाना था, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले तो.
4: ये 1960 में एक फिल्म आई थी परमधाम, उसमें इस मैथिली गाने को ये मैथिली में एक भजन है जो विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ है.
3: अच्छा अच्छा.
4: और इसी गाने को उन्होंने इतने सुंदर आवाज़ में प्रस्तुत किया है इस फिल्म में, बहुत ही सुहावना है, तो इसीलिए मुझे मेरे काफ़ी कर्णप्रिय है.
3: अच्छा.
4: इसको थोड़ा सा हम अपनी आंखें बंद करके इसको अनुभव करने का प्रयास करें तो.
3: एक्चुअली हमारी ऋचा जी ने लिखा था, फरमाइश है यदि संभव हो तो विद्यापति का पद सुनवा दीजिए. प्रिया मोरे बालक,
4: प्रिया प्रिया.
3: आप तो गा भी सकते हो, तो आप गा सकते हो क्या?
4: मैं इतना बड़ा मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा दो लाइन गाने का.
3: हाँ.
4: तो जब भी आप को लगे कि
3: तो हम एक काम करते हैं, हमारे जो संदेश आए हैं, मैसेज आए हैं हमारे फोरम पे, उसको हम सुना देते हैं. राजेश पांडे जी कहते हैं, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नाइस न्यूज़, धन्यवाद राजेश जी. अमित श्रीवास्तव जी कहते हैं, वेलकम शशि जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर ऑफ मिथिलाज रिच कल्चर. ऋचा श्रीवास्तव जी कहती हैं, शशि जी से मिथिला के बारे में जानने को उत्सुक हैं, सीता जी मिथिला से थी और मेरी सासू माँ मिथिला से थी, मुझे मैथिली गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त है. हो सकता है ऋचा जी से हम एक गाना एक आवाज़ सुनते हैं.
4: चलिए
3: ऋचा जी तैयार हो जाइएगा, आपको मैं फ़ोन करने वाला हूँ थोड़ी देर में, और आपकी आवाज़ में मिथिला का कोई गीत सुनने चाहेंगे हमारे श्रोता भी. फिर राजीव निगम जी कहते हैं, नमस्कार जी, नाइस दैट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नेगेटिव गेयरिंग इज डिस्कस, आई रिक्वेस्ट प्लीज कवर ऑन कैपिटल गेंस टैक्स ऑन सेलिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. हाँ बिल्कुल करते हैं बात राजीव जी. अभी हम इसको क्योंकि बहुत एंग्जाइटी हो रही है लोगों को, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि लक्ष्मी माता को इग्नोर नहीं कर सकते. सीता जी, सीता जी
4: लक्ष्मी जी का ही रूप है.
3: एग्जैक्टली, तो हम जो है ना उनके एक दूसरे रूप को भी लेंगे. प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ मधुर भजन. ऋचा जी फिर से लिखते हैं, नॉट श्योर इफ सिंगर इज दीपाली सहाय, जो पहला वाला हमारा जो भजन था उनका जो सिंगर कौन थे?
4: हाँ ये उन्हीं का
3: दीपाली सहाय का. अच्छा. विद्यापति के भजन मिथिला में बहुत प्रसिद्ध है, मैंने सुना और गाया भी है. तो अभी ऋचा जी थोड़ी देर में आपको मैं फ़ोन करने वाला हूँ. प्रदीप जी लिखते हैं, शिशिर जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व लगता है. बिल्कुल हैं, तो आप मिलेंगे उनसे तो और भी ज़्यादा होंगे, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन वो उतने विनम्र हैं, उतने आपको मालूम ही पड़ेगा जब आप शशि जी से मिलेंगे, तो शायद आप एहसास नहीं होगा. अमित श्रीवास्तव जी लिखते हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन सो फार शशि जी. तो अब हम जाते हैं शशि जी कि जो इसकी जो लिपि है
4: जी,
3: वो जब आपने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि इसकी लिपि भी अलग है, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट, जैसे भोजपुरी हिंदी के तरीके से लिखते हैं.
4: हाँ,
3: लेकिन
4: हाँ.
3: वो ऐसा नहीं है
4: जी, जी.
3: तो ये लिपि के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ. अब जैसे मान लो ये जनक जी ने, अब बात भाई एक और मैंने जब मैं रिसर्च करा था, जनक केवल एक नहीं है.
4: हाँ.
3: कभी काफ़ी लोग उसमें मिक्स कर जाते हैं
4: जी.
3: जो जनक सीता जी के पिता थे
4: जी,
3: वो अलग हैं. हाँ. और भी कहते हैं जो, क्योंकि जो जनक के शायद दादा रहे होंगे
4: जी,
3: वो उनका नाम भी कहीं जनक था, तो जनक एक प्रादुर्भाव हो गया कि जो एक उस ऊंचाई को पाता है उसको जनक कहने लगते हैं.
4: तो
3: मैं गलत है या सही है?
4: नहीं, आप बहुत ही नज़दीक हैं. जनक का मतलब होता है पिता, जनक का मतलब होता है वो जो बनाए, जो जन्म दे
3: जी,
4: और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीता जी के जो पिताजी थे वो उनको जनक का दर्जा प्राप्त था, और इस तरह अच्छा। से इस तरह से जो अपनी चेतना में एक स्तर से ऊपर उठ जाते थे उनको जनक बोलते थे।
3: अच्छा।
4: इनके पिता का नाम शिरध्वज था, शिरध्वज और मकरध्वज दो भाई थे।
3: ओ।
4: तो सीता जी के पिताजी का नाम शिरध्वज था, सीता जी और उर्मिला जी उनकी पुत्री थी, मांडवी जी और श्रुतकृति जी मकरध्वज की पुत्री थी। तो ये दोनों भाई थे, और इस तरह से जो है सीता जी को हम लोग अपने हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। और
3: ये तो आप तो लगता है न जाने कितना जानने को मिलेगा। तो जनक

0: सीता वाले
1: ये देखिए, क्योंकि इस बात, ये थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझना पड़े चाहिए हम लोगों को कि जब हम जनक की बात करते हैं तो जनक शरीर से विभिन्न हो जाते हैं, शरीर से भिन्न हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो यदि शरीर रहते हुए भी वो कोई दूसरे व्यक्ति थे लेकिन वो फिर भी जनक थे, और जिस जनक जो जहाँ पर अष्टावक्र जी आए थे, अष्टावक्र ने राजा जनक को सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया था। लोग शायद ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अष्टावक्र की अपनी गीता है।
0: हाँ,
1: और वहाँ पर राजा जनक ने प्रश्न के बहुत सारे प्रश्न थे जिसका जो उत्तर अष्टावक्र ने दिया, और उनका जो प्रथम श्लोक ही है, अष्टावक्र का प्रथम श्लोक ही है, वही आपको अगर उस श्लोक को समझ लें तो वहीं से आपकी चेतना जागृत हो जाएगी।
0: अगर आपको याद है,
1: श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन वहां पर यह कहा गया है कि तुम ही ब्रह्म हो। कृष्ण यहाँ, कृष्ण ब्रह्म तक आते आते 10 चैप्टर ले लेते हैं, लेकिन जब अष्टावक्र की बात आती है तो प्रथम श्लोक में ही वो खोल के रख देते हैं रहस्य कि तुम तो कुछ हो ही नहीं।
0: अष्टावक्र जो मैंने जितना समझा है वो बिल्कुल सीधा है।
1: हाँ,
0: कोई लाग लपेट नहीं, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधा ये है
1: जी।
0: आपको समझना है, लेना है लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए, कोई उसमें आडंबर नहीं है।
1: एकदम सही बात,
0: बिल्कुल प्योर है, मैं सही बोल रहा हूँ?
1: नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। तो ये
0: अष्टावक्र का पढ़ने के बाद में आदमी, अगर आपने उनकी पूरी वो गीता पढ़ ली,
1: हाँ,
0: तो फिर आपके सारे कंसेप्ट, फिर आप जो थे वो रह नहीं पाओगे अगर आपने पढ़ी ली पूरी
1: जी
0: ऐसे। तो अब फिर वापस आ जाते हैं लिपि के ऊपर
1: जी।
0: लिपि में ये हिंदी जैसी नहीं है,
1: नहीं
0: ठीक है ना,
1: देवनागरी
0: अब
1: नहीं
0: आप,
1: है।
0: अब आप यहाँ से शुरू करें।
1: हाँ। देवनागरी नहीं है, देवनागरी संस्कृत की भाषा, संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन वहाँ एक जो अपने इतिहासकार रहे हैं उनका ये मानना है कि मैथिली, बंगाली, हिंदी, असमिया, ये सारे जो हैं इंडो आर्यन फैमिली की भाषा है।
0: इंडो आर्यन,
1: आर्यन फैमिली की भाषा। अच्छा। है जिसका जिसका का पेरेंट भाषा जो है वो संस्कृत है, संस्कृत।
0: अच्छा।
1: और संस्कृत से ही सारे भाषाओं का उदय हुआ है। तो मैथिली का विकास पूर्वी भारत की प्राचीन मगधी, और या फिर मगधी का थोड़ा आप भ्रंश ले लें, उस तरह की परंपराओं से हुआ जैसा कि इतिहासकार समझते हैं। और मैंने जैसे प्रारंभ में ही बताया कि मैं इस इतिहासकारों से थोड़ा सा मेरा मत अलग है। मैं मानता हूं कि मैथिली का की जो शुरुआत है वो माता जानकी से हुई, और वहीं से हमारी लिपि भी उतनी पुरानी है, उतनी ही प्रगाढ़ है, और उतनी ही उद्यत है, मतलब उतनी ही रिच है वो। तो इसलिए मैं, मेरा थोड़ा सा मत अलग है, लेकिन इतिहासकारों का ये कहना है कि सारे मध्यकाल में 1000 साल के आसपास इन सब का उदय हुआ, और वहीं से भाषा अपने आप में रिच होती चली गई, जिसमें लिटरेचर जुड़ते गए, सबने अपना व्याकरण अडॉप्ट किया, और इस तरह सारी भाषाएं बढ़ती चली गई। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी जड़ जो है मोस्टली, अगर हम, दो तरह की लिपि होती थी पहले, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, तो ये जो है इसकी जड़ जो है ब्राह्मी लिपि से है। ब्राह्मी लिपि को आप देखेंगे कि पुराने जमाने में गुप्त काल में एक लिपि हुआ करती थी सिद्धम लिपि, वहाँ से ब्राह्मी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था, और बाद में ब्राह्मी लिपि से फिर तिरहुत लिपि बनी। इतिहासकार इसका इस तरह से वर्णन करते हैं, तो सिद्धम लिपि, ब्राह्मी लिपि, तिरहुत लिपि, और इस तरह से फिर तिरहुत लिपि अपने जो फॉर्म है उसका, उस फॉर्म में आई। तो इस तरह से लिपि का जो है ये हुआ, चलन हुआ, और इस तरह से लिपि बनी तिरहुत लिपि।
0: तो देखने में ये लगती है जैसे उड़िया जैसी लगती है देखने में।
1: इसके 13 जो ये हैं, 13 जो अक्षर हैं, 13 अक्षर
0: हैं केवल
1: ये, 13 नहीं अक्षर इसमें 55 हैं, लेकिन इसके 13 अक्षर बंगाली के जो की जो लिपि है उससे एग्जैक्टली मैच करती है।
0: अच्छा।
1: और जैसे हिंदी में अगर हमें संयुक्त करना है तो 2 अक्षरों को हम साथ में मिला सकते हैं, लेकिन तिरहुत लिपि में क्या है कि यदि हम 2 अक्षरों को मिलाना चाहें तो उसका एक नया फॉर्म बन जाता है। वो याद रखना आवश्यक है। जैसे 9 और 2 को मिलाएं हिंदी में तो आधा 9 और पूरा 2 लिखते हैं, लेकिन वही अगर 9 और 2 को हम तिरहुत लिपि में मिलाएं तो एक

0: ही प्रकार का फॉर्म बन जाता है वो। तो जो तिरहुत लिपि लिखना जानते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ आकर सीखा, कुछ लोग हैं बिहार में जो सिखाते हैं, और मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ आने के बाद हमें लगा कि जब तक हम अपनी भाषा की लिपि नहीं जानेंगे तब तक हम न्याय नहीं कर सकते। मिथिला के बारे में हम भले ही कितनी बातें कर लें, कुछ भी बोल लें, हमें अपनी भाषा नहीं लिखनी आती है। तो इसीलिए हमने उन लोग, मुझे अजय नाथ जी हैं या फिर शशिधर जी हैं, इन सबका मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि इन लोगों ने एक मुहिम चला रखी है।
1: अच्छा।
0: कि लोग तिरहुत लिपि सीखें, कि सभी ने भारत में तिरहुत लिपि लोग भूल चुके हैं। तो मैंने भी सीखा, अभी 2 साल पहले ही सीखा है, और मैंने भी यहाँ पर सीखो मिथिलाक्षर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, तो इसमें कुछ लोग आए और कुछ बच्चे अभी भी उसमें पंजीकृत हैं जो लोग सीखना चाहते हैं।
1: तो आप सिखा रहे हो, मैं फिर से बोला कि आप मिथिला भाषा को लिखना और पढ़ना
0: सिखा रहा हूँ मैं,
1: सिखा रहे हो, बोलना भी। तीनों। तो अब शायद एक बार नंबर और ही दे दीजिए, अब आपके पास फोन वाकई में आएंगे।
0: हाँ, तो ये बिल्कुल ही फ्री है, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि
1: तो आपकी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, कहीं आप बैठते हो?
0: हम ऑनलाइन क्लासेस ही लेते हैं, ऑनलाइन ही लेते हैं। और जो कोई भी ये भाषा सीखने में, लिपि सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अब मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0426-399-461।
1: और ये श्रोताओं, मुफ्त की सेवा है। मैं इसको मुफ्त नहीं कहूँगा, इसमें दूसरा कोई वर्ड होना चाहिए, वो अभी ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन ये ऐसी अमूल्य है जिसको कहते हैं, का कोई मूल नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, एक दूसरा और तरीका मैं बता सकता हूँ सिंपल वाला, कोई मिथिला की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ले लो तो वो फिर जो वही बोलती हो तो आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा।
0: उसमें यह है कि जैसा मैंने बताया कि भाषा तो बोल लेते हैं लोग, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। लिखने के लिए आपको सीखना आवश्यक है।
1: जी,
0: इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सीखें भाषा को।
1: जी, आप जो फिर से मैं एक बात में कहूँ कि जब आप भाषा सीखोगे तो उसके साथ में और न जाने क्या क्या सीखोगे आप।
0: जी, उसके
1: अब नया संसार खुल जाएगा,
0: पूरा का पूरा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है।
1: अच्छा, जब आप छोटे होंगे
0: और माँ दादी ये सब, हमारे दादाजी ये सब उस तरह का शब्द उपयोग करते थे, और हमें वो सारे शब्द अब सुनने को नहीं मिलते, वो सारे शब्द चले गए।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही लगता है कि
1: अभी इस चीज़ को एक्चुअली मैं सच नहीं कर पाया, जो मोदी गवर्नमेंट ने एक पूरा वो चलाया हुआ कि सारी भाषाओं को वापस जीवित करना है।
0: जी,
1: एक उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
0: जी हाँ 2014 में ये सौभाग्य मिला मैं 2004 में तो सबसे पहले इसको अनुच्छेद जो अपना 18 अनुच्छेद 18 में इसको स्थान दिया गया।
1: हाँ,
0: और पार्लियामेंट में इसको बकायदा संविधान भी, हाँ, भारतीय संविधान इस भाषा में भी बना, जो अभी हाल में रिलीज हुआ है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: 2014 में यूनिकोड स्टैंडर्ड में भी इसको स्थान मिला, और अभी इसके जो भी कोई मिथिलाक्षर या तिरहुत लिपि में कुछ डेवलप करना चाहते हैं उन सभी मेरे IT प्रोफेशनल वाले भाइयों को ये सलाह है, यदि कभी कुछ किसी तरह का कोई इंटरेस्ट हो इस फील्ड में कुछ करने का, कृपा करके संपर्क करें, और वो कर सकते हैं तिरहुत लिपि में भी, और वो उपलब्ध है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये जो लिपि की अगर आप बात करें तो जैसे एक छोटी सी सलाह है या छोटा सा पॉइंट है कि जैसे कि हम मैसेज लिखते हैं अपना इसमें अपना आईफोन में मैसेज लिखा, राइट, तो इसमें है क्या वो?
0: नहीं, अभी तक होगा शायद, क्योंकि मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। मैंने उसमें देवनागरी में आ जाता है अगर आप वो लिखेंगे।
1: हाँ, देवनागरी में आ जाता है
0: लेकिन ABC2 जैसा एक होता है ना कि आप इंग्लिश में टाइप करते हैं और कन्वर्ट हो जाए, जो जिसको ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं, तो देवनागरी में ट्रांसलिटरेट हो जाता है लेकिन तिरहुत लिपि में नहीं हो पाता है वो।
1: हाँ,
0: तो वो नहीं
1: वो
0: है,
1: वो भी आप एक मेरी तरफ से एक मुफ्त की सलाह है।
0: हाँ, बिल्कुल, तो
1: उससे फिर क्या ना, यंग लड़के लड़कियां जुड़ेंगे और वो फिर उसको आगे लेंगे कि भाई हम लिख सकते हैं।
0: यदि होगी तो मुझे नहीं, आप लोग हमें बताएं अगर ऐसा कोई ऐसी कुछ,
1: क्योंकि आप IT वाले हैं, AI वाले हैं,
0: जी,
1: तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं, आप बना के भेज भी सकते हैं, इनका कोई सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम होगा छोटा सा जो कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कैसा लग रहा आपको प्रोग्राम, ये जो मैथिली भाषा में हमारा जो कल्चर है, और इस कुछ बोलने वाले हैं, अगर कोई आप मुझे फ़ोन करना चाहें इसके बारे में, कुछ आप इनपुट देना चाहते हैं, कृपया मुझे फ़ोन करिए। मेरा नंबर है 0421-590-791 पे, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो फोरम है उस पर भी लिख सकते हैं। मैं अभी चाहता हूँ कि कुछ लोगों को और इसमें इन्वॉल्व करा जाए
0: जी।
1: उससे जाने के पहले हम एक छोटा सा गाना भी सुनते हैं।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: 2000 station sponsor.

0: सुशु जी,
1: जी
0: ये आपने जो गाना हमें ये दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से
1: ये भी विद्यापति का ही एक पद है और बहुत ही एक प्रचलित कहानी है कि भगवान शिव स्वयं विद्यापति के यहाँ निवास करने आए थे, उनके
0: ओ, तो
1: उनके
0: विद्यापति बारे
1: हाउस होल्ड
0: का
1: पे।
0: कई बार, क्योंकि रिचा जनी है, मैं ये
1: जी
0: लिखा है,
1: जी
0: विद्यापति के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए फिर।
1: विद्यापति लोग बोलते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी के एक महान कवि रहे हैं, जिनका जिन्होंने जो अपना जो प्रेम के ऊपर में, समर्पण के ऊपर में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं।
0: अच्छा
1: और जैसे कि पहले बात कर रहे थे, बंगालीज भी बोलते हैं कि विद्यापति उनके आदि कवि हैं, मैथिली में
0: हाँ,
1: हम उनको मैथिल कोकिल बोलते हैं।
0: अच्छा
1: तो और विद्यापति के लिए एक फेमस है कि उनके यहाँ भगवान शिव स्वयं आए थे, उनके यहाँ उनका सेवा करने के लिए आए थे, उनका पद सुनने के लिए उनका सेवा करते थे वो। और इनको पता नहीं था, विद्यापति जी को पता नहीं था कि
0: हाँ
1: वो भगवान शिव स्वयं हैं। तो एक बार वो जा रहे थे, इसी तरह किसी राजा ने बुलावा भेजा, चले गए वो अपना, और पीछे पीछे उनके उगना जी चल रहे थे। उनको उनके नौकर का नाम उगना था, शिव जी जो आए थे वो नौकर की तरह आए थे और उन्होंने अपना नाम रखा उगना। तो उनको बहुत प्यास लग गई जंगल में, और जंगल में इतनी प्यास लग गई कि वो समझ नहीं, मतलब अब लग रहा था कि प्राण अब चला जाएगा, तब चला जाएगा। तो वहाँ पर उगना ने बोला कि मैं पानी जल लेकर के आता हूँ, और जल कहीं आसपास था नहीं, तो गए और पीछे में अपना जटा खोला और गंगा जल लेकर
0: हाँ, ले
1: के
0: आए। अच्छा
1: तो उन्होंने विद्यापति को पीने के लिए दिया, और विद्यापति को लगा कि ये तो साधारण जल नहीं है, क्योंकि उनकी उनका एक पद है गंगा जी के ऊपर में, अंत अपने शरीर छोड़ने से पहले वो गंगा जी के किनारे रहते थे, इसलिए वो गंगा गंगा को इतना जानते थे, उनके उनका जो जल था उसका स्वाद उनको पता था कि गंगा का पद जल
0: हाँ
1: है। तो उन्होंने उगना को बोला कि ये साधारण जल नहीं है, ये गंगा का पानी है, तुम बताओ कौन हो।
0: हो
1: हाँ, तो फिर जिद पर अड़ गए और बोले कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। अब हठ में, भक्त भक्त के हठ में भगवान शिव भी जो चार हो गए, उन्होंने फिर अपना साक्षात रूप दिखाया
0: ओके,
1: और फिर उनको एक शर्त रखी कि आप ये बात किसी को बताइए
0: बताएंगे
1: मत,
0: नहीं।
1: लेकिन जो विधि होता है आपको हाथ पकड़ के करवाता है। उनकी पत्नी को पता नहीं था, विद्यापति के पत्नी को, और उन्होंने एक अनादर कर दिया भगवान शिव का, और विद्यापति ने उनको रोका कि ये साक्षात शिव जैसे ही बोलने गए वो अंतर्धान हो गए। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ ये प्रसंग बोलते हुए, क्योंकि उसके बाद वो भटकते रहे, खोजते रहे शंकर भगवान को,
0: लेकिन वो
1: लेकिन मिले नहीं। तो ये हम लोगों ने पिछले बार मिथिला महोत्सव किया था, उसी में हमारे छोटे भाई की तरह हैं चंद्रशेखर जी, अविनाश जी, इन दोनों ने इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया था।
0: अच्छा,
1: तो ये गाना चंद्रशेखर जी ने स्वयं गाया हुआ।
0: तो आप भावुक हो गए काफ़ी इस समय। एक श्रोताओ, हमारा जो भजन एक गाने के बाद में जो हम सुनाते हैं वो सुनिए पहले।
2: Complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
0: मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऋचा जी को एक फ़ोन से बात करूँ। तो ऋचा जी, आप अगर सुन रही हैं तो या तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, और नहीं तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। श्रोताओ, इस समय
3: हाँ यतिन जी,
0: ऋचा जी, मैंने आपको कई बार मैसेज भेज दिया, अब आपको सरप्राइज नहीं
3: जी
0: होना चाहिए। आप जी पहले जी। तो विद्यापति जी के बारे में भी आपको सुनवा दिया है, ठीक है ना
3: जी।
0: लेकिन
3: जी।
0: मैं चाहता हूँ कि आपकी मधुर भाषा में, मधुर आपकी जो मैथिली, उससे मैं कुछ सुनना चाहूंगा
3: जी। जरूर जरूर
0: सुनाइए
3: जी। सबसे पहले तो यतिंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है और शिशिरेंद्र जी जो है वो खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ मैथिली जी हाँ अगर उन्होंने मैथिली में कुछ लिखा है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और विद्यापति के तो पद, एक एक पद उनके जो है ना दिल को छूने वाले हैं। तो मेरा फेवरेट है प्रिया, उसी के कुछ चंद लाइनें जो है मैं कोशिश कर सकती हूँ।

0: क्या बात है रचा जी, क्या बात
1: तो ये गीत जो है ना विद्यापति ने लिखा था, जब पहले बाल विवाह होता था, शिशु जी इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो बाल विवाह में वो कैसे माँ से अपने कहती है कि बच्चे से तुमने शादी कर दी, और उसको उन्होंने वर्णित किया है। तो
0: तो बाल विवाह उस समय भी बता रहा होगा।
2: हाँ, बाल विवाह, हाँ,
1: जी।
2: कम उम्र में शादियां होती थी। और जो
0: ये कब की
2: जो
0: कौन से एरा की बात होगी
2: ये
0: लगभग?
2: विद्यापति हमारे 1300 1400 के कवि हैं।
0: 1400 के
2: हाँ, तो
0: कवि।
2: उन्होंने उसी समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके ऊपर में सब लिखा है। और जो क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी हम उम्र होते हुए भी थोड़ा सा उनका जो ये है
0: लड़कियां उम्र में,
2: उम्र
0: हाँ,
2: में
0: वो मेच्योर जल्दी होती,
2: मैच्योर हो
1: मतलब
2: जाती
1: लड़कियां
2: हैं।
1: मेच्योर जल्दी हो जाती थी, और उनके पति जो हैं वो दिमाग उनका बाल बाल
2: बालक
1: अवस्था में ही
2: जी
1: था,
2: जी
1: तो उसको वर्णित किया है
0: हाँ,
2: इन्होंने।
0: अच्छा
2: और
0: अच्छा
2: समाज के इस कुरीति को विद्यापति ने लोगों के सामने लेकर के आए। और यदि इसीलिए केवल एक श्रृंगारिक पद नहीं है बल्कि उस समय जो समाज में की क्या गहरी सामाजिक वास्तविकता थी और एक स्त्री के मन की पीड़ा क्या है,
0: ओ
2: इसको उन्होंने बहुत ही सहज शब्दों में और बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है
0: क्या बात है, क्या बात
2: जी।
0: है। एक
1: वैसे भी मैथिली भाषा बहुत ही कर्ण प्रिय, बहुत ही मधुर है। तो कुछ बातें हम चाहेंगे शिशिर जी जो है मैथिली में ही कहें, और कुछ कुछ कविताएं हमें सुनाएं।
0: मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मैं कल ये सोच रहा था कि किस एक में थोड़ा अपने लिए एक बना लूं कुछ उसको स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करके, लेकिन वो बन नहीं पाया। कि
2: नहीं
0: मैं भी शुरुआत आज के प्रोग्राम की मैथिली में बोल के ही करूं, ये मेरा प्रयास है, लेकिन वो हो नहीं पाया।
2: एक वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, अपन जे मधुर वाणी छे वैसा आप सबके अनुग्रहित के लिए बाज का सच में दिल हृदय से गदगद भ गया। वास्तविक में बहुत बढ़िया, बहुत बहुत निक
1: धन्यवाद।
0: चलिए, आपकी भी फरमाइश पूरी होगी ऋचा जी। आपने हमें जो समय दिया वो इतनी मधुर अपने कंठ से इतनी मधुर जो संगीत का प्रभाव आपने छोड़ा, बहुत ही सराहनीय, बहुत बहुत सा धन्यवाद।
1: जो है ना समय नहीं दिया, अगर प्रैक्टिस करती तो थोड़ा बेहतर गा सकती।
0: आप
2: मैं आपसे संपर्क
0: आपको
2: करूंगा
0: आप,
2: ऋचा जी।
0: आपको समय देने की कोई जरूरत नहीं है ऋचा जी। आप आपको बस
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद ऋचा जी। तो आ, आ, आ, श्रोता हुआ जो लोग मैं समझता हूँ, मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ, कई लोगों के फर्दर आए हैं कि मैं मिथिलेश ही बोले, बहुत बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम इज गोइंग। तो अभी एक हमारे श्रोता हैं जो हमारे को मैसेज करा, मैं उनका पढ़ता हूँ कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं जसप्रीत जी
2: जी
0: को एक फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। तो एक और हम बात करना चाहते हैं मैथिली के बारे में कि हेलो जसप्रीत, हाँ कैसे हैं आप?
3: बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच।
0: हाँ चलिए, मैं आपको अभी अभी आप लाइव हैं रेडियो पे, अब बताइए
3: जी,
0: आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहती हैं?
3: नहीं, आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, ऑलवेज लिसन री एवरी संडे, और मैं बहुत
0: बहुत
3: एंजॉय
0: बहुत
3: करती हूँ
0: धन्यवाद।
3: आपका म्यूजिक भी, और आपके शैलजा जी की, और आपकी हिंदी भी। आई लव शैलजा जी की प्योर हिंदी, और आज मुझे मिथिला का सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आई एम पंजाबी एनीवे, बट मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ये हो रहा है, इसको आप डेवलप भी कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आई वुड लव टू जॉइन हिज ऑनलाइन क्लासेस टू।
0: अच्छा चलिए, तो फिर आप
2: बहुत बहुत
0: आपको दो स्टूडेंट मिल गए, एक मैं मिल गई हूँ, जसप्रीत जी मिल गए। और
3: बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं तो कल रात को ही सुन रही थी मनोज वाजपेयी और उनका कपिल शर्मा के शो पे आए थे वो,
0: अच्छा
3: एंड आई
0: अच्छा
3: लव दिस लैंग्वेज एनीवे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे वो बोलते हैं।
0: अच्छा
3: मैं तो
0: अच्छा
3: इनकी मूवीज भी कई बार देखती हूँ
0: हाँ,
3: ऐसे
0: एक
3: आजकल
0: कई मूवी आई
3: ऑनलाइन।
0: हैं जो एक वासीपुर गांव कुछ ऐसा था वो,
2: वासीपुर
3: वासीपुर तो है ही है।
0: हाँ
3: हाँ बिल्कुल, वो तो प्रोग्राम है पूरा,
0: अच्छा
3: नॉट
0: प्रोग्राम
3: एनी
0: है।
3: मूवी, वो तो शो है। हाँ जी हाँ, मैंने भी देखा है पूरा, अब उनका और आई थिंक थर्ड भी आ गया है सीजन,
0: अच्छा
3: तो हाँ थोड़ा सा रफ है, मतलब इट्स वेरी वायलेंट.
0: मैं एक्चुअली मैं न फिल्में, या मेरा शायद मैं एक साल में दो तीन फिल्में देखता होऊंगा.
3: अच्छा?
0: और
3: माय गॉड, हम तो दिन में दो तीन देख लेते हैं.
0: मैं मेरा थोड़ा सा वो है कि मेरी जो पत्नी है वो साल में शायद एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं शायद, वो शायद 730 फिल्म देखती होंगी. तो फिर वो कम बैलेंस बराबर हो जाता है. तो उनको उनको ये बहुत पसंद है. तो वो मुझे
3: हाँ, हम तो बड़े लकी हैं कि अब इतनी लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया की इतनी लैंग्वेजेस हैं.
0: जी
3: तो
0: बिल्कुल सही बात आपने कही
3: है कि हम अब सुन सकते हैं यू नो यहाँ पे
0: जी.
3: और लाइक सारा कुछ अवेलेबल है अब तो यू नो. पहले तो सिर्फ प्रोग्राम्स होते थे जहाँ यू हैव टू पेड टीवी
0: जी.
3: अब तो इतने अनपेड भी आ गए हैं और
0: जी
3: यू नो इट्स सो गुड, बहुत अच्छा हो गया
0: जी. और फिर आप सीख सकते हैं, आप सिडनी में रहते हुए भी, सिडनी में हो सकता है अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, बाद में हो सकता है कि आप फिजिकल भी सीख सकते हैं
2: जी.
3: एंड नॉट ओनली दैट, मैं तो ये देखती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज जो हमारे बच्चे नहीं भी सुनना चाहते और लैंग्वेज से भी दूर जा रहे हैं, जब आप हम टीवी देखते हैं तो उनको मजबूरी से देखना पड़ जाता है तो लैंग्वेज कहीं तो आएगी ना उनको भी.
0: सही बात है, सही बात है. और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि लैंग्वेज, अब जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो पंजाबी बोलते होंगे शायद, तो अब आपके बच्चे अगर मान लो पंजाबी नहीं बोलते तो कितना डिस्कनेक्ट हो गया.
3: देखो मैं बताऊँ, हमारे पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स पंजाबी बोलते थे, हम खुद वहाँ हिंदी बोलने लग गए थे इंडिया में. तो आई थिंक मेरी हिंदी ठीक ठाक है बोलने में,
0: बहुत अच्छी.
3: तो अच्छा, और फिर हमारे बच्चे भी हिंदी बोलते हैं, लाइक पंजाबी थोड़े वर्ड्स बोल लेते हैं, सुनते हैं, बट हिंदी तो हमने यहाँ पे उनको रखी है, लाइक दे आर इन देयर 40s और अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं बच्चे. तो मगर ग्रैंड चिल्ड्रन अब नहीं बोलते हैं यू नो.
0: अब उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्ट का जो सबसे बड़ा जो जो सैड पार्ट है वो है कि जो उनकी जो जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो पास ऑन नहीं हो पाती हैं, जो उनके जीवन के अनुभव हैं वो नहीं आ पाते हैं आपस में. वो दूसरे को बात करना चाहते हैं लेकिन वो अब भाषा का जो माध्यम है वो नहीं हो पा रहा है.
3: तो
0: कितना दुख होता होगा उनको, ग्रैंड पेरेंट्स को और बच्चों को भी, कि वो बात नहीं कर पा रहे
3: और बाद में वो रिपेंट करेंगे.
0: बिल्कुल.
3: बिल्कुल.
0: तो भाषा इसलिए भी जरूरी है, इसलिए मैं ये मिथिला भाषा के भी बात कर रहा हूँ कि इससे जो कल्चर और जो वैल्यूज मिलेगी, जो जो लोग अब जैसे शिष्य जी की जो बेटी है, अब अगर उसको नहीं मालूम होगा और मान लो शिष्य जी के जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, मान लो लड़की के ग्रैंड पेरेंट्स या इनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो मिथिला में अपने आप को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो उसी में हो सकती है, जो जो भाषा आप जानते हो, तो वो रह गया ना सब कुछ
3: जी, जी, जी.
0: और अगर आप उसको एक भाषा सीखते हो उसमें क्या बुराई है.
3: मैं बिल्कुल सीखनी चाहिए. देखिए अपने कंट्री की कोई भी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, मैं तो बोलती हूँ जितनी ज्यादा हो वो भी सीखनी चाहिए
0: जी.
3: अगर आप बिल्कुल हिंदी पंजाब कल्चर्स भी सीखने चाहिए, महाराष्ट्रियन. ये तो अभी मैं देख रही थी कि कोई है यहाँ कपर क्लब, कुछ सपर क्लब है
0: सपर क्लब, तो
3: हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं था, आज ही मैं पता नहीं रील में कैसे आया. तो मैं तो सोच रही कि वो भी देखना चाहिए, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट, वो आया था गुजराती जैन खाने के ऊपर.
0: अच्छा.
3: मेरे पास रील, तो मैंने वहां से देखा तो पता चला महाराष्ट्र भी. तो आई थिंक हम लोगों को एक्सपोजर होना चाहिए, हमको मालूम लगना चाहिए किसी तरह से, एंड पीपल शुड गो एंड ज्वाइन यू नो. हमारा कल्चर बढ़ना चाहिए, खाली ये नहीं कहता ठीक है, मतलब ठीक है इंग्लिश तो आएगी आएगी हमको,
0: इंग्लिश
3: तो हम सब होंगे ही होंगे बिकॉज हम यहाँ हैं, मगर हमें अपना जो वैल्यूज हैं, अपने मॉरल्स हैं, अपने ये जरूर अपने बच्चों को किसी तरह से विरासत में देनी चाहिए. अब कैसे है ये आई डोंट नो.
0: नहीं वो आएगा नहीं, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ना दर्पण रेडियो पर, जो हम प्रयास कर रहे हैं ये उसी की श्रृंखला है, कई लोग और जुड़ेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, जो अभी सुनने वाले हैं. और भी श्रोताओं अगर कोई हमारे साथ संपर्क करना चाहता है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 04215907911 पे. जसप्रीत जी आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू आपने मेरे को दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके.
0: तो शशि जी, एक और हम आपका जो रिकॉर्डेड है वो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को, एंड
2: अवश्य।

तक रे बारी। चल कुकरवा टहल लगो अंगना घरक ममता छो, मन खुश कर बनल अपनी आबक कहतो हियो हियो। पर

0: Curry Master's complete curry mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं अभी हम बात करते हैं नेगेटिव गेयरिंग और कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर. तो पहले तो नेगेटिव गेयरिंग को मैं बता दूँ ये बला क्या है. जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो ये बड़ा पॉपुलर है हमारे भारतीयों में. तो जैसे कि आप सैलरी वेजेज अपना इनकम करते हैं और साथ साथ में आपने एक इन्वेस्टमेंट करा प्रॉपर्टी में और कई वजह से उसमें नुकसान होता है, तो उस नुकसान को अब दूसरी इनकम से विच इज़ सैलरी वेजेज या बिजनेस की इनकम जो होती है उससे आप सेटअप कर देते हो, जिससे कि वो आपको टैक्स से रिफंड मिल जाता है. तो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि समझो आपको 1.5 लाख की सैलरी है और उसमें आपने टैक्स दिया है समझो $50,000. अब यहाँ पे नेगेटिव गेयरिंग हुई आपकी, वो $30,000 की हुई, तो अब आपकी इनकम 1,20,000 रह गई. तो 1,20,000 पे आपको अब टैक्स समझो पड़ता है $40,000, ठीक है. तो $10,000 आपको ATO वापस करता था, तो ATO सॉर्ट ऑफ फंडिंग करता था आपकी नेगेटिव गेयरिंग को. तो ये नेगेटिव गेयरिंग बड़ा पॉपुलर होता था, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि हमारी सरकार पॉलिसी बदलती रहती है, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्करेज हो गया. तो जो इस्टेब्लिश प्रॉपर्टी होती हैं जिनको सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं, अगर आपने वो लिए तो आप उसके ऊपर वो मना कर दिया कि अब आप उसके ऊपर नेगेटिव गेयरिंग नहीं कर सकते. आप केवल जो नई प्रॉपर्टी होती है, नई का मतलब है कि जो बिल्डर आपको बेच रहा है या आपने नई बनाई है उसको अगर आप और एक्चुअली इसमें भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आपने कोई ग्रीन फील्ड पे जैसे जो बिल्कुल ज़मीन है उस पर घर बनाया है तो उस पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने घर तोड़ के नया दूसरा घर बनाया तो वो नहीं है. और हाँ, अगर घर तोड़ के आपने दो बनाए हैं तो उसमें हो सकता है नेगेटिव गेयरिंग का, वरना नहीं हो सकता है. तो जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि ऐसा नहीं कि नए घर आपने कहा आपने घर तोड़ा दूसरा बना लिया तो उससे बना लिया, तो वैसे नहीं हो सकता है. अच्छा, अब आप कहेंगे कि साहब नेगेटिव गेयरिंग नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे. तो उन्होंने क्या करा है कि अब आप अपने नेगेटिव गेयरिंग को, तो एक तारीख आप लिख लीजिए 12 मई 2026 जो बजट की शाम थी 7:30 बजे का समय है, उसके बाद में अगर आपने कुछ ऐसे लिया है और तो आपको इस साल तक, तो ये जो साल है नया हमारा फाइनेंशियल ईयर है जुलाई से जून होता है, तो 30 जून 2027 तक तो आप कर सकते हैं, उसके बाद में वो आप नहीं कर सकते उसका नेगेटिव गेयरिंग. तो क्या होगा उसका, फिर जो पैसा जो आपका लॉस हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन हो जाएगा आपका. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई और रेंटल इनकम आ रही है भविष्य में उसके साथ में आप सेटअप कर सकते हो, या इस साल में भी, मतलब जो भी साल है उस साल में अगर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी से नेगेटिव गेयरिंग होती है उससे सेटअप आप कर सकते हो, ठीक है. या अगर वो उससे नहीं हो पा रहा है तो जब आप कल को आप प्रॉपर्टी बेचते हो 1 मिलियन का 2 मिलियन हो गया तो उस समय इस लॉस को आप यूज़ कर सकते हो. तो ये नर्सल में बोला है, आप ऐसे गूगल भी कर सकते हो, AI सर्च भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो डेट हैं, तो एक डेट ये हो गई कि 12 मई के पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है. वो ग्रैंडफादरिंग रूल बोलते हैं, वो जैसे चल रहा था आपका वैसे चला गया, एक तो ये पॉइंट हो गया. 12 मई के बाद में आपने लिया है तो केवल इसी साल में आपको जो भी मिलना है मिल गया, उसके बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है. तीसरा है कि जो नया घर भी है उसकी डेफिनेशन को आपको बहुत क्लियरली समझना है कि अगर आपने घर तोड़ के उस पर एक ही घर बनाया तो उस पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने घर तोड़ के उसमें डुप्लेक्स बनाया तो उसमें मिलेगी, तो उसको हम नया घर मानेंगे. अब ये नए घर की डेफिनेशन है. आप उसमें अपना कॉमन सेंस का जो लॉजिक होता है वो नहीं लगाएगा कि मैंने नया घर बनाया है, तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा उसके बाद में बात करते हैं। एक और हम बात कहना चाहते हैं आपसे SMSF में। हाँ, तो SMSF में अभी जो लॉ पास हुआ है, जो पास हो चुका है लॉ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप SMSF में लेते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, केवल मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर आपने SMSF में लिया है, SMSF का मतलब है सॉरी सेल्फ मैनेज सुपर फंड, तो उसमें अब लोन नहीं ले सकते हो आप। पहले हम लोन ले सकते थे, अब लोन नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टी तो ले सकते हो लेकिन लोन नहीं ले सकते हो। होपफुली ये क्लियर हो जाए आपको। और SMSF में अगर आपका उसमें नुकसान होता है, चार बातें होती हैं, तो वो आप क्योंकि ये नेगेटिव गेयरिंग नहीं कहलाती है SMSF में, आप मालूम पड़ा कि आपने 30,000 का अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और आपका प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, तो वो अलग तरीके से ट्रीट होगा। ये जो नेगेटिव गेयरिंग वाली बात करी थी वो केवल इंडिविजुअल के केस में करी थी। आशा कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर चाहें तो अपने अकाउंटेंट से भी इसके बारे में बात कर लेना और आप अपनी भी जो पर्सनल सर्कमस्टांस हैं उसको दिमाग में रखते हुए कई डिसीजन को लेना। ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, आशा है कि आपको ये लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है शशि जी, थोड़ा मैंने आपका ये थोड़ा बीच में तोड़ा था, क्योंकि
2: नहीं कोई बात नहीं,
1: धंधे की बात भी होना चाहिए,
2: अर्थ भी आवश्यक है।
1: पैसे का अगर झमेला अगर ठीक नहीं करा, दर्पण हर चीज की सहायता देने की कोशिश करता है,
2: तो होना भी चाहिए,
1: ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम एक और हम अपना संदेश सुनते हैं और फिर हम बात करते हैं आपसे वापस।
3: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
4: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
1: तो सुताओ, मैं प्रदीप जी को भी लेके आ रहा हूँ। प्रदीप जी कैसे हैं? आप भी तो मिथिला के रहने वाले हैं ना?
5: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मिथिला का रहने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन
1: अरे पड़ोसी हैं भाई, और क्या है, आप तो
5: पड़ोसी हैं। और बड़ी सुंदर मधुर भाषा है। हाँ। और शिष्य जी ने जो बताया इसके बारे में बड़ा अच्छा लगा, राजा जनक के बारे में, जनक किसे कहते हैं उसके बारे
1: में। मुझे भी एक्चुअली ये पहली बार मालूम, मैं समझता था कि उनका नाम जनक है।
5: और खास बात यह है कि जब उन्होंने मैथिली में बोला ऋचा जी की प्रशंसा करते हुए, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो मतलब मिली जुली मुझे लगा कि बंगाली भी है, उड़िया भी है। मैं बंगाल में रह चुका हूँ इसलिए मैं उससे अच्छी तरह से।
1: तभी आप इतने इंटेलिजेंट हैं।
5: धन्यवाद इसके लिए। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है शिशिर जी, ये बड़ा अच्छा अच्छी बातें कर रहे हैं और बड़ा उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, बड़ा अच्छा लगा। और शिशिर जी क्योंकि AI में है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक और प्रोग्राम है वो AI के बारे में भी आकर बात करें, क्योंकि
2: हमारा सौभाग्य है, मैं हमेशा प्रस्तुत हूँ।
1: शिशिर जी को हाँ बिल्कुल, आप तो AI के ऊपर अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया
2: अवश्य अवश्य
1: जी, और उसमें हम मिथिला को भी थोड़ा सा हम टच करते रहेंगे, ये मैंने सोचा है, थोड़ा थोड़ा मिथिला के ऊपर हम बात करते रहेंगे, जिससे कि जो हमने आज जो आज चेतना में थोड़ी सी आग लगाई है उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें घी डालते रहें बाद में।
5: और हमें बड़ा गर्व है कि जितनी सुंदर तरीके से हमारी ऋचा जी ने,
1: हाँ ऋचा जी ने तो प्रोग्राम में जान ही डाल दिया,
5: कमाल है, फैंटास्टिक है, बहुत बहुत मजा आया।
1: हाँ बिल्कुल, तो जो एक्चुअली हम सुना रहे हैं, जो इन्होंने हमें रिकॉर्ड करके दिए हैं, वो तो ऋचा जी की आवाज के आगे कुछ है ही नहीं।
5: मैं बहुत वो बहुत सुंदर है, आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आकर हमसे बात की, और अगले प्रोग्राम में भी आने का वादा करते हैं, क्योंकि हमें उनकी जो मल्टी टैलेंट है उसका उपयोग करते हैं अपने दर्पण रेडियो में।
1: जी धन्यवाद प्रदीप जी।

0: जीली मकार्थर की साल के अंत की डेमो क्लियरेंस सेल अब शुरू हो गई है। इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए 3 साल की मुफ्त सर्विसिंग, $2,000 का शानदार ट्रेड इन बोनस, साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त। जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI। ऑफर 30 जून तक ही मान्य है। आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए। नियम एवं शर्तें लागू। MD 5411।
1: 2 OOO स्टेशन स्पॉन्सर।
2: प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में है? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल है इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
3: ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो शिशिर जी
4: जी,
3: जो एक संस्कृत के ऊपर हम थोड़ी सी इसकी बात करना चाहते हैं और उसमें पेंटिंग का भी फिर आता है, तो चलो पेंटिंग से शुरू कर लेते हैं पहले। इसकी जो पेंटिंग है ना, वो बहुत ही एक यूनिक भी है, उनको UN का एक टैग भी अलग से मिला हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
4: देखिए, मिथिला पेंटिंग जो है, आपने बहुत ही सही कहा कि इसको UN का टैग मिला हुआ है और इसकी ये बहुत ही अब पिछले कई दशकों में, मुझे लग रहा है 2 दशकों में इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। था ये भी पहले भी, और इसको पहले, इसको मिथिला में क्या है कि घर घर में हम इसको बनाते थे। धीरे धीरे कालांतर में लोग छोड़ते गए और फिर ये विलुप्त प्राय हो गई, और फिर लोगों ने समझा और इवन सरकार ने भी महसूस किया कि ये ऐसी कला है जिसको जीवित रखना बहुत आवश्यक है। तो इसको जानबूझकर और सरकार के प्रयासों से इसको जीवंत किया गया। इसमें कुछ कलाकार जैसे दुलारी देवी, जो पद्म भूषण हैं, वो थी, उनकी साड़ी आपने देखा होगा पिछली बार वित्त मंत्री जी पहन के आई थी, उन्होंने ये दिया था।
3: अच्छा
4: जी, दुलारी जी द्वारा प्रदत्त वो साड़ी थी। तो ये जो मधुबनी चित्रकला है, ये इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है
3: जी।
4: इस कला को घरों की दीवार, आंगन और विवाह कक्षों में बनाई जाती है, लेकिन आजकल अभी है, इसको थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। इसको लोग कागज पे, कपड़े पे, कैनवास पे और अलग अलग सजावट की वस्तुओं पर बनाई जाती है। इसके अलग अलग शैलियाँ हैं, आप इन शैलियों में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन मिथिला में और दूसरे प्रकार के भी कलाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं अरिपन कला। सिक्की घास से लोग ये बनाते हैं, रखने की चीज़ें बनाते हैं, जिसको सिक्की घास की कला बोलते हैं। एक कला है जिसका नाम है सुजनी कढ़ाई। तो पहले क्या होता था कि पुराने कपड़ों को लगा करके लोग एक छोटा सा एक तो ये बनाते थे, बैठने के लिए जगह बनाते थे, बैठने का बनाते थे, उसको सुजनी बोलते थे, और वो बाद में चल के उस सुजनी कला ही बन गई।
3: अच्छा
4: जी। इसके अच्छा। अलावा लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, लोक मुखौटे बांस की लकड़ियों से भी काफ़ी कुछ मिथिला स्पेसिफिक चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो,
3: तो ये अगर मैं बात करूँ कि जो ये पेंटिंग वगैरह हैं, वो आपकी पूरी जो संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो भी दर्शाता होगा।
4: हाँ, तो
3: जो आपके राजा रहे हैं उन सब का होता है। क्या मिथिला में ऐसा क्या फ़र्क है, ये मेरा शायद प्रश्न है।
4: तो मधुबनी कला में देखिए कि क्या है कि हमारा जो मेन क्या है, राम भगवान अयोध्या से आए और उन्होंने सीता जी से विवाह किया। तो उसमें जो वो रामायण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ मिलेंगी।
3: अच्छा अच्छा।
4: उसमें हनुमान जी भी मिलेंगे, राम भगवान की, और मुख्य प्रकार से राम और सीता के विवाह के ऊपर में बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलेंगी।
3: अच्छा अच्छा वो है एक
4: जी।
3: अच्छा
4: और उसमें फिर अब तो धीरे धीरे से मैं यहाँ पर सिडनी में एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक हमारे मित्र हैं उनको जानता हूँ, जिन्होंने इवन सिडनी और इनका जो भी अपना सिडनी का जो ब्रिज है उसके ऊपर भी, उसको भी मिथिला कलाकृति का आकार दिया है।
3: हार्बर ब्रिज की आप बात,
4: हार्बर ब्रिज की, जी हार्बर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। और वो जो अपना एक,
3: तो यहाँ पर सिडनी में है वो।
4: सिडनी में।
3: अच्छा।
4: और भारत में भी मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं मात्र इस कला के माध्यम से। और अच्छा। जो लोग मुख्य रूप से उनका शोषण करते हैं, उनकी कलाओं को ले लेते हैं और उसे या तो अपने नाम पर चलाते हैं या फिर उसी कला को बहुत अधिक मूल्य में बेचते हैं।
3: तो मैं इसको शोषण तो नहीं कहूँगा। देखिए एक मैं बात बोलूँगा
4: जी, जी।
3: जो वो व्यक्ति जो मान लो कहीं पे, मान लो दरभंगा में कोई एक गांव में कोई बना रहा है
4: जी।
3: उसको वहाँ पे समझो वो 100 रुपये में बेच रहा है।
4: हाँ।
3: और किसी ने 100 रुपये में लिए
4: जी,
3: तो उसमें कोई शोषण नहीं हुआ। अगर मैं आके उसको $100 में बेचता हूँ,
4: अब उसको व्यापार कह सकते हैं। लेकिन मैं, मेरा ये मानना है कि यदि उस व्यक्ति को उसकी पहचान ना दी जाए कि ये व्यक्ति,
3: वो अलग बात आ गई। हाँ। वो चोरी करना एक अलग बात। हाँ। हो गई कि आपने किसी की
4: तो वहाँ पर, इसीलिए मैं ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ बिहार में जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कलाकृति बनाते हैं बहुत। और मैंने, मेरा एक प्रण ये भी है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही बड़ा हम एक उसके कुछ प्रदर्शनी,
3: हाँ प्रदर्शनी करिए ना।
4: और बिहार के जो
3: आप हमें बताइए, हम दर्पण रेडियो के हमारे जो भी श्रोता हैं
4: जी
3: उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो खरीदेंगे उसको।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के जो एकदम ग्रास रूट लेवल के जो कलाकार हैं उन सबके कला को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे
3: जी।
4: और हमारी ये इच्छा है कि उन सबको उनका सम्मान मिले, उन सबको जो उनका जो उनको अभी तक नहीं मिल पाया, लोग नहीं जानते हैं और वो ऐसे कला को बनाते हैं, उन सबको उनका सम्मान मिले। क्योंकि
3: एक तो ये बात है, लेकिन मैं तो कहूँगा एक मेरा एक पहलू है इसके बारे में, वो ये कि जितनी ज़्यादा हर घर में जाए पेंटिंग,
4: हाँ हाँ बिल्कुल,
3: इतनी अफोर्डेबल हो, हर आदमी
4: अफोर्डेबल होना,
3: चोरी भी करे, सारा फोटो कॉपी करे, कोई फर्क, लेकिन जाने।
4: हाँ।
3: एक बार को उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू, चार बातें आना शुरू हो जाती है। ऐसे मैं सोच रहा हूँ।
4: हाँ।
3: इस नंबर गेम,
4: हाँ ये इसको थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि ये इस चीज़ को अगर यदि हम बिजनेस का फॉर्म समझते हैं।
3: हाँ।
4: तो ये केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सेंटर्ड है, ये कुछ लोग ही इसको चला रहे हैं और वो इतनी वैल्यू पर बेचते हैं जिसका मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली।
3: एग्जैक्टली। अब जैसे कि समझो कि मैं अपने बिजनेस से हमारे जो हम हर साल कुछ ऐसे देते हैं, अब अगर आप चाहिए तो, जैसे आपने, जब आपसे बात कर रहा हूँ सोच भी रहा था कि समझो कि आपने हमें, समझो हमने आपसे 100 पेंटिंग ली, वो हमें हम अपने जो क्लाइंट को देते, तो अगर वो अफोर्डेबल होंगी तो मैं दे पाऊंगा, वरना नहीं दे पाएंगे।
4: एग्जैक्टली वही बात है।
3: अगर आप कहेंगे भाई ये $100 के, तो फिर कहाँ से होगा,
4: नहीं हो पाएगा।
3: तो अगर आप, चलिए अभी हम बिजनेस डील भी कर लेते हैं, आप हमें जो है ना 100 पेंटिंग दीजिए, हम अपने क्लाइंट को देते हैं।
4: हाँ,
3: तो इस तरीके, तो एक इस तरीके से। अच्छा शशि जी, अगर आप इजाजत दें तो एक मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगा।
4: अवश्य अवश्य।
3: तो जो हमारे सुशील जी लिखते हैं, बहुत अच्छा रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। लीला जी लिखती हैं, लीला जी हमारी बहुत डेडिकेटेड कंट्रीब्यूटर भी हैं, लिसनर भी हैं। मैं श्री कृष्ण पर एक आइटम 22 भाषाओं में गाती हूँ जो विभिन्न धुनों पर आधारित है, उसमें मैथिली भाषा में भी एक गीत है। मैथिली भाषा, कन्हैया तोहर बसी सबक मन मोहे, सबक मन बोहे सबक मन बोहे, कन्हैया तोहर बसी पे मोती मूंगा सोहे, मोती के झिलमिल सबक मन बोहे। मेरा यह आइटम स्कूलों कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुआ है। अरे क्या बात है लीला जी, तो बहुत मल्टी डायमेंशनल है भाई। हमारे प्रदीप उपाध्याय जी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में अतीन जी द्वारा दी गई जानकारी सभी श्रोताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन टैक्स के नियमों को यदि व्यवहारिकता के संदर्भ में देखा जाए तो कुल मिलाकर यही संदेश कि एक घर भगवान ने दिया हुआ है, उसमें आप खुश रहिए, जो प्राप्त है आप प्रदीप जी क्यों हमारे अकाउंटेंट के बिजनेस को बंद करना चाहते हैं? अगर सब लोग उस चले गए आपकी भाषा में, खुश रहिए पर्याप्त है जो है, तो फिर अकाउंटेंटों की क्या ज़रूरत पड़ेगी? प्रदीप जी, राजीव निगम जी कहते हैं हैप्पी टू लिसन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन मिथिला इंक्लूडिंग सॉन्ग फ्रॉम ऋचा जी। ऋचा जी फिर से लिखती हैं, प्रदीप जी यतीन जी शिशिर जी, मुझे अवसर देने के लिए साभार धन्यवाद। मेरी दिली इच्छा है कि दर्पण रेडियो के माध्यम से एक लोकप्रिय एक लोकगीत पर कार्यक्रम हो जिसमें सभी प्रांतों के लोग, हाँ बहुत अच्छी है आपकी सलाह है, लोकगीत का बहुत बड़ी बात है और वो आपको छू जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा, ये बॉलीवुड ने क्या कर दिया कि हमारी हमारी सारी विंडो बंद कर दी है, केवल एक ही रह गई है।
4: बिल्कुल
3: ऋचा जी, आप कह रही हैं कि क्या सुंदर गीत है पहुनवा राघव, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये। ऋचा जी कहते हैं मिथिला भाषा की मिठास का कोई बात ही निराली है। रीता जी फिर लिखती हैं कि ये अति सुंदर विचार है, तो रीता जी भी आपके विचार से सहमत हैं ऋचा जी, तो लोकगीत के ऊपर हम एक प्रोग्राम करते हैं। नितिन जी लिख रहे हैं, नितिन जी हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी जानकारी पूर्ण पेश किया, जिससे मैथिली भाषा पर बहुत ही नई जानकारी मिली, विद्यास्पति बाल विवाह संस्कृत से मालूमात हुई और गाने की बहुत ही कर मधुर हैं। हमारे चेतन शाह जी लिखते हैं, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम फ्रॉम मुंबई, अरे मुंबई में है, बड़ी गर्मी चल रही होगी वहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने एक प्रवीण जी को भी फ़ोन करते हैं और देखें वो प्रवीण जी क्या कहते हैं। प्रवीण जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू,
3: बताइए।
5: नाइस टू बी हियर, थैंक यू।
3: आप बताइए हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं?
5: एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपनी अपनी भाषा को सुन के और हर एक जो विचार है और आपका भी जो प्रेजेंटेशन इज फैंटास्टिक, सिंधी में से बैठ के सुनना, यू शुड ब्लेस्ड, यू शुड ब्लेस्ड टू सी दिस,
3: चलिए अच्छा
5: है दिस, वी हैव टू प्रमोट दिस मोर, ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा
3: जी।
5: इस आपने पहले बात करी रिगार्डिंग द बजट
3: जी,
5: तो उसपे हाँ उस समय इसमें काफी अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन है मार्केट को
3: जी,
5: क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या कोशिश कर रही है, उनकी इंटेंशन क्या है। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हो सकती है जैसे उन्होंने बजट सोचा था ऐसे पास ना हो इन द एंड, तो थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, उसको प्लीज आप एलाबोरेट कर देंगे दैट विल बी ग्रेट
3: जी। तो प्रवीण जी, एक तो बात आपने बोला इंटेंशन क्या है, इंटेंशन

0: बना रहा है तो एक की बजाय दो घर बनाए। ये उनका जो मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ कि पुरानी प्रॉपर्टी पे उन्होंने इंसेंटिव ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब आपको अगर नेगेटिव गेयरिंग का फ़ायदा उठाना है तो नई प्रॉपर्टी बनाओ, ठीक है, नई प्रॉपर्टी लो। अगर आप बनाते हो तो आपने अगर घर तोड़ा तो एक की बजाय अगर दो बनाओगे तो आपको नेगेटिव गेयरिंग मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। ये इसका मूल उनका उद्देश्य है कि घर की नंबर तो सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब इसके जो जो लॉ है, जो इसका लॉ भी पास हो चुका है नेगेटिव गेयरिंग के ऊपर, और अब जो कैपिटल गेन वगैरह का है उसके हम बाद में थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि अभी समय हमारा थोड़ा सा हो रहा है और हमें कई बातें करनी है मिथिला के ऊपर। लेकिन जो आप तो अकाउंटेंट हैं, खुद ही आप इतने अच्छे अकाउंटेंट हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो लोग आज की डेट में वेल्थ क्रिएट करना चाहें, मैं सीधी एक आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप SMS को अब शायद इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक पॉइंट ज़रूर होगा। आप अपने अकाउंटेंट से बात करिए कि ये SMS क्या बला है और कैसे हम वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। जो नेगेटिव गेयरिंग भी होती है वो वेल्थ क्रिएशन का एक माध्यम होता है, उस पर उन्होंने थोड़ा सा रोक डाल दिया। लेकिन अगर आप SMS को समझते हैं उसके थ्रू आप कई चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरा एक संदेश है मेरी तरफ से। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रवीण जी?
1: बिल्कुल ठीक कहा, एक ही बात रही है, जो मार्केट में चेंज आ रहा है वही कि मूविंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। SMS वाले नॉर्मली कितने क्लाइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं SMS
0: जी?
1: तो आई थिंक व्हाट्स हैपेंड इज के जो SMS जो इंडस्ट्री फंड हैं उन्होंने गवर्नमेंट ने पुश कर दिया कि नाउ यू हैव टू गो थ्रू इन्वेस्टमेंट्स थ्रू इन्वेस्टमेंट फंड्स नाउ एंड नॉट जस्ट SMS इन ए वे ना, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर दिया ना, बिकॉज मेनी केसेस पीपल वुड बाय अंडर SMS वेरी प्रॉपर्टी।
0: नहीं नहीं, उसमें क्या है कि SMSF का एक तरीका होता है, यू कैन हैव 6 मेंबर आप मिलकर कर सकते हो कई चीज़ों को। एक SMSF की कई स्ट्रेटजी होती हैं और अगर आप समझते हैं कैन यूज दोज स्ट्रेटजी एंड यू कैन क्रिएट द वेल्थ। ये ऐसे मान आप अपने अकाउंटेंट से पूछिए, अकाउंटेंट आपका अच्छा जवाब देगा। अगर आपको हमसे बात करनी है आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं दर्पण रेडियो पे 0421-590-791। प्रवीण जी, आज आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम में और भी अगर हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। भावनात्मक और चार बातें कर रहे हो कहां ये दुनियादारी के बाद में आ जाते हैं तो थोड़ा सा लेकिन हम एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: 2000 station sponsor.

0: बताओ ये गैस करना है आपको कि किसने गाना गाया था।
1: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
0: तो शशि जी, समय मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि यहाँ पर लोकल एक्टिविटी क्या हो रही है। मैं सोचा था कि काफ़ी कुछ हम कवर कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ मैं तो सोचता था सारे कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम ऐसे कर लेते हैं, पहले तो हम यहाँ पे क्या क्या आप कर रहे हो जिससे कि लोग आपसे जुड़ें, और मैथिली भाषा को जो लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करें? आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी संस्था क्या, कोई वेबसाइट है, ईमेल क्या है, वो आप प्लीज़ हमें बता दीजिए।
3: एकदम। तो यहाँ पर हमारी पहचान है मिथिला कल्चरल सोसाइटी .au, एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्रेजेंस है जिसको बोल लेते हैं, होम पेज है
0: जी।
3: तो मिथिला कल्चरल सोसाइटी .au, इस पर जाएं और यहाँ पर हम हमारे संस्था से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तभी आने वाला, मतलब पिछले साल हमने मिथिला महोत्सव किया जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसके ऊपर में अपने कमेंट्स दिए, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक था। और इस साल हम उस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं, मिथिला महोत्सव 2026, जहाँ पर
0: कब है वो?
3: ये अक्टूबर 17 से लेकर अक्टूबर 19 तक है।
0: अरे वाह
3: जी, 3 दिनों का प्रोग्राम है।
0: क्या बात है
3: जी। और 3 दिनों में हम यहाँ पर दुर्गा पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि हम शाक्त हैं। मिथिला के जो संतति हैं, मिथिला के जो लोग हैं, उनको शाक्त बोला जाता है, क्योंकि
0: शाक्त,
3: शक्ति के जो उपासक होते हैं उनको शाक्त बोला जाता है।
0: अच्छा, हाँ।
3: तो क्योंकि माता जानकी के हम संतान हैं और माता जानकी शक्ति स्वरूपा हैं।
0: अच्छा।
3: तो हम शाक्त हैं और इसीलिए दुर्गा माता का, काली माता का हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में बहुत ही महान स्थान है। और उसी परंपरा में हम दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं।
0: अच्छा।
3: जो पूरी तरह से मिथिला और मैथिली को समर्पित है।
0: अच्छा।
3: और उसमें एक सेगमेंट हम 3 घंटे का देंगे, जो पूरी तरह से, जिसका शीर्षक होगा मिथिला महोत्सव 2026, जिसमें मिथिला से संबंधित गायन, नृत्य, आर्ट, कला, संस्कृति, कोई लिखना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, इस हर चीज़ होगी। और ये 3 घंटा, वैसे तो तीनों दिन पूरा डेडिकेटेड होगा मैथिली के ऊपर में, लेकिन ये 3 घंटा हम लोग साथ आएंगे, बातें करेंगे लोग।
0: कहाँ पे है ये?
3: ये क्वेकर्स हिल कम्युनिटी सेंटर में है।
0: अच्छा।
3: 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर।
0: अच्छा।
3: और बहुत ही सबको समझने का,
0: अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई जो मिथिला में जो गाना करना चाहे, आपका कुछ ड्रामा वगैरह भी होगा?
3: हाँ, हम इसमें दो स्किट भी रहेंगे, और बेस्ड ऑन जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं हम और स्किट की संख्या बढ़ा सकते हैं।